पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम धेना सो ऐसा हर त्याईये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम धेना सो ऐसा हर त्याईये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पालत मुख उज्जल होई है नित ध्याईये हर पुरख निरंजना। जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पालत मुख उज्जल होई है नित ध्याईये हर पुरख निरंजना। रहाओ जय हर सिमन पया तै अपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर भवजल तरना। जय हर सिमरन पया तै अपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर भवजल।

0: धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
1: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश
0: केते बर में घड़त घड़िए रूप रंग के वेश
1: केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश
0: केते एंद चंद सूर केते केते मंडल देश
1: केते सिद्ध बोध नाथ केते केते देवी बेस
0: केते देव दानव मन केते केते रतन समुंद
1: केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद
0: केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत
1: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ नोद कोड आनंद
0: सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप
1: ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए
0: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

0: राम रहा भरपूर
1: तिथे सीतो सीता में माहे ताके रूप न कथने जाए
0: ना मरे न ठागे जाए जिनके राम बसे मन माहे
1: तिथे भक्त बसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सोए
0: अच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल
1: जिथे खंड मंडल पर पंड जे को कथे अंत न अंत
0: जिथे लो अकार जेब जेब हुकम तेवे तेव कार
1: वेखे विकसे करमी चार नानक कथना करड़ा सार
0: जात पहारा धीरज सुन यार आहरण मत बेद हथियार
1: पांडा पाओ अमृत टाल
0: घड़िए शब्द सची टकसाल।

0: नमो सर्वान समासी निदानी नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पाणे
0: नाथ नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: रतन रते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती प्रभुते
0: बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे परम रूपे
1: नमो जोग जगेश्वरम परम सिद्धे नमो राजेश्वरम परम विद्धे
0: नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र मान नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते नमो जोग जगेश्वरम परम जुक्ते
0: नमो नत नारायण गुरु कर्मि नमो प्रीता प्रे देवे सुतर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाह नमो पुपुपे
0: नमो दान दान नमो मन मान नमो रोग रोग नमस्तम शनाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो
0: परम परमेश्वर पुरुष पालं सदा।

0: जात पात न नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूपमी का नौसते पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत
0: आमीन भंगनात्मिक पुरख पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार
0: अभुदंता सर्वंता सर्वती अनपीख
1: सर्व शास्त्र न जानिए जय रूप रंग रेख
0: परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित

0: सुभद्र मुक्त भूत है, प्रभुक्त प्रभ है, सुजुक्त सुधा है,
1: सदैव अंग स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्व सज है,
0: समस्त सुलाम सदैव काम निर्वास रूप है, गाद अनूप है,
1: गाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे,
0: त्रिभाद्य गंजी अगाद्य शुभम सर्पागी सर्वानुरागी,
1: त्रिभुक्त स्वरूप है, अशिद है, शुद्ध है, कनकन पर नाते हैं, पृथ्वी अल पर वास है,
0: रक्त प्रभा सदैव अंग सदा भोक्स रूप प्रजोक्त अनूप है,
1: निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजोक्त

0: सर्वहंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांतवय प्रसाद
0: नमो नरक नासिस देवं प्रकाशय नंगं स्वरूपे पंगं भूते
1: परमात्मं परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते
0: नमितर पंगितर काम निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी।

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं तो प्रसाद सवैये सरावक सत समूह सिधान के देख फिर घर जोग जती के
1: सूर सराधन शुद्ध सदाहिक संत समूह अनेक मती के
0: इसको देख रहे हो मत को उन दीक्षित प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एकर ती बिन एकर ती के
0: तंग चर जर संग अनूप तंग सुरंग सवारी
1: कोट रंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारी
0: भगवान के भू भली बदन आव शीस न जात बिचारी
1: कहां पे
0: भूपत अंत
1: को
0: नांगे
1: ही पाए
0: पधारे सब देश को मृदंग नगारे
1: गुड़
0: जान के सुंदर भगवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारे
1: श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के काम सदारे
0: नियत नांद आदम दान संजम नियम अनेक बसिख
1: वेद प्राणिक देव करान जमीन जवान स्वान के पेख
0: नार जति जा तार सब सब चार हजार के देख
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एकर दीबिन एक न लेखे
0: तो सुबादरंत दबाव सास सुनादर जान दलेंगे
1: पारीक मान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
0: और रीन मरोर मवासन मातम तंगन मान मलेंगे
1: श्रीपति श्री भगवान के

0: यो सोला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोला सतगुरु सुनाया
1: एक का मनवसिया जंतर हो लिखियाया
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गल्ली किने ना पाया
1: नाम शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया
0: पवित्र होए सेजना जिन्नी हर त्याया
1: आप वै तो गुरुमुख जिनी त्याया
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सवाया
1: पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित्र जिनी
1: अपनी सहज न उपजै बन सहज सहसा ना जाए
0: सहसा
1: कि संजम रहे कर्म कमाए संजम धोता जाए
0: मन तो वो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए
1: नान गुर प्रसादि सहज उपजै सहसा उपजाए
0: जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया
1: इतना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया
0: नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो
1: नानक जन सच तजया कूड़े लागे इतनी जन्म जुए हारिया
0: जियो निर्मल बारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी
1: सोई पहुंचे नाही मनसा सच समानी
0: जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे
1: नानक जन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे
0: को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे ता सन्मुख से कोई जियो रहे गुर नाले
1: गुर के चरण हृदय ते आई अंतरात्मा संभाले
0: आप छंड सदा रे पन्ने गुर बिन अवर न जाने कोई
1: नाम सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
0: गुर ते बेमुख
1: होवे ना और था कोई पुछो भवेकिया जाए
0: सतगुर मुक्त
1: ना लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए
0: नानक विचार देखो
1: सतगुर मुक्त ना पाए सतगुरु के प्यार उगावो सच्ची बाणी
0: बाणी लगावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
1: कौन अदर कर्म हो वह हृदय तना समाणी
0: वो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग बाणी
1: नानक सदा गावो सच्ची बाणी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुर वाजो होर कच्ची बाणी
1: कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी
0: हर हालत करे रसना कहरा कछु ना जानी
1: जन कहर ल मां बोलन पैर वाणी
0: कहे नानक सतगुर वाजो होर कच्ची बाणी
1: का शब्द रताना हीरे जित जड़ाऊ
0: शब्द रतन जित मन लागाए

तृष्णा बुझ प्रभु के सिमरन सब की सूझ प्रभु के सिमरन ना ही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह नानक जन की मंगर वल्ला प्रभु को सिमरै से परे उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसे अरनेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग।

किन माहे उधारी अनकुन चरण करत नहीं धरै अर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सकल सृष्ट को राजा दुखिया अर का नाम जप तो है सुखिया लाख करोरी बंद ना पर अर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिख ना बुझावै।

का नाम जन को तृप्त भोगतो और का नाम जन का रूप रंग और नाम जप कपरे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई।

सीता सुमृत से विखटे तैसा मान तसा मान तैसा रंग तसारा जान जो वरताए साई जुगत नानक पुर कहिए जीवन मुक्त है।

चीत जब लग भू मगन संग माए तब लग धर्म राय सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लख उड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनुक भोग विख्या के करे न तृप्तावे खब का मरे बिना संतोख नहीं कुराजे सुपन मनोरथ तीर्थ सब काजे नाम रंग सर्व चुको बड़फांगी से प्राप्त तो होए करण करावने आपे आप सदा सदा नान कर जा करण करावने करणे हार इसके याद का विचार जैसी दिशके जैसा हो आपे आप आप प्रभु सो जो कुछ गिनो अपने रंग सब ते दूर सब मुख संग पूजा देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरण बिनसे आपने जाए नानक सदी रह समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचे सबके साथ आप किनू अपन विस्तार सब कछ कहो करने हार उसते भिन्न कहो कुछ होए तां तनंतर कै सोए अपने चलता करने हार कौते करे रंगे फार मन में आ मन अपनी माए नानी कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु सामे गुरु प्रसाद किन वख्या ने सच सच सत सब किन्ना कौन मदे किन बिरले चीना भला भला भला तै रूप असुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण के आने।

पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म प्रपे साहसा सुन रो गोविंद मंत्रे कुतरे चंदासन त्याग गोत्रंग संचना की तुम मन मांगे आव छोड़ बेनती करो साह संगे गुण सागर तरो हर तन की प्रलय भंडार नानक गुरुपुरे नमस्कार केम कुशल सहजनंद साह संग भज परमानंद नरकुनवार धारो जी गुण गोविंद मृत रसवे चेचित व नारायण के कृप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुखन पूर्ण कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह आधार उत्तम सलोक साध गिवत नाम ली कला लेतन संत कुमार तो उदार अवतर लोक अनुसार सब जीव सबलता का संग जाके मन लग हरंग जय जय शब्दनाथ वाजे सुन सुनम करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल मात के माते नान कुदरे तिनके साथे शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिटके बैर भय सबरे नमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होय सेवक की सेवाल जंजाल विकार तिरह ते सुन राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खे बीमारी प्रभु की सुख करो संदेश सावधान एक कर चेत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोध निदान सर्व चाहता की पूर्ण होय प्रदान पुरु पुरु सब लोय सब ते उज पाए स्थान बोलन होय आवन जान हरदन काट चले जन सोए नानक से प्राप्त होय खेम शांत रिद नाम निध बुद्ध ज्ञान सर्व तैसिद विद्या तप जोग प्राप्त आन ज्ञान से सुतम स्नान चार पदार्थ गुण प्रकाश सब के मसल ते उदास सुंदर चतुर तत्व गवेता समदृष्टि एक दिशे ताय फल ते जन के मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहन धन जपे मन को सब जुग मेता की गत होय गुण गोविंद नाम धुन बाणी सुमर शास्त्र वेद उखाण सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन सुराम कुट उपराज सा संगड़े संत कृपा ते जम ते छूटे जाके मस अग्रम प्रभाए सा संग नानक ते आए जिस मन बसे सुन लाए परे तिस जन आवे हर पाचे जन्म भरंता का दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उधारे निर्मल सुभा अमृता की वाणी एक नाम मन मैं सुमाणी दुख रोग बिन सेवै भरम साध नाम निर्मल दाखे करम सब ते ऊच ताकी सोभा बणी नानक गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन सेवै भरम साध नाम निर्मल दाखे करम